0: और ये बात बिल्कुल गलत थी। दोनों तकरीबन एक साल तक इसी तरह फोन पर बातें करते रहे। एक फैमिली के होने के बावजूद एक दूसरे के घरों में बहुत आना जाना नहीं था, इसलिए ये टेलीफोन की दोस्ती छुपी रही। अब इस लड़के के दिल में भी लड़की के लिए जज्बात थे और ये मामला सिर्फ बात करने की हद तक रहा। इन्हीं दिनों उस लड़के के भाई की शादी की बात चली और उसके भाई का रिश्ता इसी लड़की से तय हुआ। सब कुछ इतना जल्दी और अचानक हुआ कि वो लड़की इनकार न कर सकी, क्योंकि उसके घर वाले फैसला कर चुके थे और जिस वजह से वो इनकार कर रही थी वो वजह वो बता नहीं सकती थी। दूसरी तरफ लड़के की तरफ भी यही मामला था। उसको भाई की मंगनी का तब पता चला जब मामला तय हो चुके और अब इनकार नहीं हो सकता था। आज वो लड़की उसी लड़के की भाभी है। ये सारी बातें मुझे उसी लड़की ने सुनाई हैं। वो इतनी शर्मिंदा है अपनी इस गलती पर कि दिन रात का गिल्ट उसके अंदर है। उसके शौहर अच्छे हैं मगर दिन रात गिल्ट में रहती है कि वो उन्हें धोखा दे रही है। शादी से पहले इन्हीं के भाई से इन्वॉल्व रह चुकी है। इस लड़के का भी यही हाल है कि भाई से आंख नहीं मिला सकता। उसने अपनी पोस्टिंग दूसरे शहर करवा ली, बहुत कम घर जाता है। देखा जाए तो सारी जिंदगी उसके सर पर एहसास जुर्म की ये तलवार लटकती रहेगी जो उसको कभी खुश नहीं होने देगी। यानी गलत काम करने का नतीजा कभी अच्छा नहीं हो सकता। आप कीकर बो के आम कैसे ले सकते हैं? गलत काम करेंगे तो किसी न किसी वक्त उसका खमियाजा किसी शक्ल में तो सामने आएगा। अगर दुनिया वालों से वो ऐब छुपा भी रहे तो जो अंदर का जमीर है वो ऐसे कचोके लगाता है कि इंसान को चैन नहीं लेने देता। इसलिए कभी भी अपने आप को छोटी मोटी तावीलों से मुतमैन करके ऐसे गलत काम में मत उलझाएं।
1: इंटरनेट के बारे में किसी ने पूछा था कि उस पर चैट और फिर उसके नतीजे में शादी और ताल्लुकात जो है वो कैसे हैं। तो यहाँ किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी है जिसमें एक वाकया दर्ज है, आप भी सुन लीजिए। लिखते हैं कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया की एक ऐसी तफरीही पेशकश है कि जिससे आज की नस्ल कुछ जरूरत से ज्यादा ही लुत्फंदोज हो रही है। यही वजह है कि इससे मुतल्लिक कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आ रहे हैं जो इंतहाई तकलीफ दे हैं। कुछ इसी हवाले से एक सबक आमोज वाकया। ये कहती है कि मैं कॉलेज से आकर तकरीबन हर रोज ही अपने जाती कंप्यूटर पर कुछ वक्त गुजारा करती, किसी काम की गर्ज से नहीं बल्कि नेट के इस्तेमाल की बुनियादी वजह मेरे वो लातादाद मुल्की और गैर मुल्की दोस्त थे जो मैंने चैटिंग के जरिए बना रखे थे। इन्हीं में से एक लड़का जिसका नाम विकी वकार था, शुरू शुरू में तो मुझे वक्त गुजारी का महज एक जरिया लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी बातों से कुछ ऐसी मरूब हुई कि उसकी शख्सियत की गर्विदा होती चली गई। काफी रोज से मेरी उसकी बात नहीं हुई थी, न मेल न चैटिंग, मैं सख्त परेशान थी। और फिर एक दिन पैगाम मिला कि वो लाइन पर है। उसने पूछा कैसी हो, मैंने उसे अपना नाम सोहनी बताया। मैंने कहा तुम बताओ कहाँ थे इतने दिन। दरअसल मुझे मुलाजमत मिल गई इसलिए मसरूफियत बढ़ गई, बड़ी मुश्किल से फारिग वक्त मिला तो अब ऑफिस ही से चैट कर रहा हूँ, विकी ने जवाब दिया। वैसे असल काम तो मुझे अब करना है। वो क्या, मैंने पूछा तो हंसकर बोला अरे भाई तुम्हारे घर अपने घर वालों को भेजने का, इतनी जल्दी काहे किया। मुझे घबराहट होने लगी और वैसे भी न तुमने मुझे देखा न मैंने तुम्हें, सिर्फ इंटरनेट के जरिए हम दोनों शादी जैसे बंधन में बंद कैसे जाएं, ये कैसे हो सकता है। मैंने खुलकर वजाहत की तुम्हारी बात दुरुस्त है लेकिन जरूरी नहीं कि इंसान सिर्फ जाहिर से मुतासर हो बल्कि मिजाज और फितरत में हम आहंगी भी इस रिश्ते में बन जाने के लिए काफी है। उसका जवाब ठोस था लेकिन मैंने फिर पसोपेश की शादी सिर्फ एक लड़का लड़की नहीं बल्कि दोनों खानदानों का बंधन होता है। क्या मालूम जब हम मिलें तो कुछ ऐसे इख्तलाफात पैदा हो जाएं कि जिनके पेश नजर हमें पीछे हटना पड़ जाए। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए मैं तुम्हारे और अपने घर वालों के माबेन सिर्फ जहनी हमांगी जांचने के लिए रिश्ता भेज रहा हूँ। अगर रिश्ते में कोई रुकावट हुई तो उसका पहले ही पता चल जाएगा और फिर हम जिस दौर में जी रहे हैं वो और किसी रिश्ते के न होने के बावजूद भी एक रिश्ते की हैसियत से जरूर कबूल कर लेगा और वो रिश्ता है हमारी दोस्ती का। उसने मुझे कायल करने के लिए तफसीली जवाब दिया चलो यूं ही सही लेकिन मैं कल तक की मोहलत चाहती हूँ क्योंकि मैं जज्बात को बालाए ताक रखते हुए जाती तौर पर किसी से मशवरा करना चाहती हूँ। मैं अंदर से बहुत खुश लेकिन कुछ खौफ ज्यादा भी थी सो मैंने एक रोज की मोहलत मांगी। ठीक है तो मैं कल तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, कहकर उसने राब्ता मुनक़िते कर दिया। मेरा भाई हबीब काफी रोज से किसी लड़की से चैटिंग कर रहा था जिसका वो थोड़ा बहुत तस्करा भी किया करता था लेकिन मैंने कुछ खास दिलचस्पी नहीं ली थी, मगर आज मुझे देखते ही वो चिल्ला उठा तानिया आज आखिर मैंने उससे बात कर ही डाली, जानती हो वो भी तकरीबन राजी ही है, बस जरा सी मोहलत चाहती है, शायद अपने वालदैन को मेरे मुतल्लिक राजी करने की कोशिश कर रही हो। हैं भैया ویسے وہ دیکھنے میں کیسی ہے؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا، پتہ نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ بالکل میرے خوابوں کی رانی کی طرح ہی ہوگی۔ بھیا چہرہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس کا اصلی نام بھی جانتے ہیں یا؟ میں نے پوچھا۔ اس کا نام سونی ہے، اور خدا کرے وہ بالکل اپنے نام کی طرح ہی سونی ہو۔ اور جانتی ہو وہ کتنی سمجھدار لڑکی ہے، بالکل جذباتی نہیں، کہتی ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی سے مشورہ کر کے ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ بھیا تو جانے کیا کیا بولتے رہے، لیکن میرے لیے وہ الفاظ جلتی ہوئی چنگاریوں کے سوا کچھ نہ تھے۔ پتھر کی مورت بنی میں اپنے بھائی کو مسرت سے جھومتی دیکھتی رہی، مجھے تو خود بھی شرم آ رہی تھی، خدا یہ کیا ہو گیا۔ اور پھر میں نے اس منحوس نیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رابطہ ختم کر دیا۔ سمجھ میں آ گیا واقعہ؟ جس سے چیٹ کر رہے ہیں آپ کو کیا معلوم وہ مسلمان بھی ہے یا نہیں، آپ کے رشتے کے قابل بھی ہے نہیں، یا وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے، یا بچوں کا باپ ہے، یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے اخلاق اور کردار کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے۔ ٹیلی فون پر ایٹ لیسٹ آواز سننے سے کسی کی عمر اور کسی اور چیز کا پتہ چل جاتا ہے، مگر نیٹ پہ تو کچھ بھی کسی کا نہیں جانا جا سکتا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی لڑکا بن کر بات چیت کر رہی ہو۔ تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں بسا اوقات مشکلات پیدا کرتی ہیں، اور یہ مشکلات نہ بھی پیدا ہوں تو بات یہ ہے کہ وقت کا کتنا ضیاع ہے۔ صرف چیٹ اور گپ شپ اور وقت گزارنا، یہ سب چیزیں کسی بامقصد انسان کی زندگی میں تو نہیں ہو سکتی۔
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے۔

0: निकल रही थी, सुसर उसके बीमार थे, तो हॉस्पिटल से निकल रही थी कि मैंने देखा कि एक अकेली औरत टैक्सी में है और टैक्सी आकर रुकी है और रात के 8:30-9 बजे का टाइम है और पुलिस वाला साथ निकला है। तो मैं एकदम घबरा गई कि क्या है। उस वक्त आसपास कोई और औरत नहीं थी तो पुलिस वाले ने मुझसे कहा कि आइए हमारी मदद कीजिए इस खातून को अंदर ले जाने में और रखने में, स्ट्रेचर पर डालने में, क्योंकि कोई नर्स भी खातून ड्यूटी पर नहीं थी उस वक्त।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हजरत उमर का एक कॉल है, इजा उल्बिसा अलैकुम शैउम मिनल कुरान फल्तमिसूहु फिश्शर। जब कुरान की कोई बात समझने में तुमको इल्तिबास यानी शुबा पड़ जाए, मिक्सअप हो जाए चीज, तो उसकी वजाहत कहाँ से देखो? शेर अरब में। अरब शायरी जो थी उसमें क्या था? अरब शायरी उसमें अल्फाज को बहुत बारीक तरीके से बयान किया गया है। अरबी का एक मशहूर मिसरा है, इन शायरा दीवानुल अरब, इन शायरा दीवानुल अरब। माना क्या है कि शेर अरबों का दीवान है। दीवान का मतलब उनका रिकॉर्ड है, उनकी हिस्ट्री है। अरबी की तफसीरें आप पिछली कदीम कई सौ साल पुरानी देखें तो उसमें जब अल्फाज की वजाहत होती है तो शेरों पर शेर लिखे होते हैं। तफसीर कुर्तुबी देख लीजिए, तो जो कुर्तुबी की तफसीर है अगर आप उसको पढ़ें तो आप देखेंगे कि वो एक वर्ड लाते हैं, वर्ड की एक्सप्लेनेशन शेरों से करते हैं कि फुलां शायर ने इस लफ्ज को यूं इस्तेमाल किया, फुलां ने यूं और यूं, और इसका माना ये बनता है। अब देखिए कि मैं भी जब आपको ये कराती तो शेर तो मैं नहीं लाती इसलिए कि आपने अरबी शायरी पढ़ी नहीं है, लेकिन रूट्स में जाके बात करते हैं कि इस लफ्ज का रूट क्या है। इसीलिए इसका तर्जुमा मैंने ओढ़नी की थी। ओढ़नी, ओढ़नी का मतलब क्या था? ऊपर ओढ़ने वाली चीज। इसका लफ्ज मैंने तर्जुमा दुपट्टे नहीं किया, आपको याद होगा, मैंने कोई कल्चर का लफ्ज नहीं यहां बोला। ओढ़नी ठीक है, आपके बहुत शकील उर्दू में शायद ओढ़नी दुपट्टे के लिए इस्तेमाल हो, लेकिन ओढ़नी का लफ्जी माना क्या है? ओढ़ी जाने वाली चीज, चाहे वो कोई भी हो, उसे आप बुरका कहें, स्कार्फ कहें, दुपट्टा कहें, चादर कहें, जिससे छुपाया जाए। तो खिमार अरबों के हां, अरब औरतों का अगर आप दौरे जाहिलियत की अरब औरतों का कल्चर देखें तो वो क्या करती थी कि सर का जो लिबास होता था उसको यहां से पहनकर, यानी सर ढांक कर, यानी इसमें तसव्वुर ही नहीं कि सर खोल दें, क्योंकि सर ढांकती, खिमार लफ्ज ही सर ढांकने वाले कपड़े का है, उसको ढांक कर फिर क्या करती, पीछे बांध देती थी। और गर्दन और जेवर और सीना, ये सब चूंकि औरत के जिस्म में सबसे ज्यादा खूबसूरत चीज ये उसका सामने का हिस्सा है, तो वो इसी को एक्सपोज करती थी। और आज भी आप देखें कि खवातीन अपनी खूबसूरती के लिए इसी फ्रंट पोर्शन को जाहिर करती। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि ये जो ओढ़ने वाली चीजें हैं इसको सर पे चीथड़ा ना रखो, बल्कि क्या करो, उसको लंबा करो और उसे सीने तक ले आओ। उसकी लेंथ कितनी हो, यहां दरअसल वो लेंथ बताई जा रही है कि एटलीस्ट ऊपर वाले ड्रेस की लेंथ कितनी हो, वरना कमीज तो पहना ही होता था, फिर तो उसके भी ओढ़ने की क्या जरूरत है। तो वो लेंथ बताई जाए, क्योंकि आज भी कई लड़कियां जैसे स्कार्फ लेती हैं तो बसा औकात उसी स्कार्फ का एक पल्लू लेके मुंह पे ले लेती हैं, वो मुंह तो ढका हुआ और नीचे से सब सीना खुला हुआ है, ये भी दुरुस्त तरीका नहीं है। नहीं, एक पल्लू उठाया और उसी से मुंह ढांक लिया और वो क्या हुआ, वो चलती जा रही है और सीना सब नुमाया हो रहा है, ये दुरुस्त नहीं है। उसमें स्कार्फ की लेंथ एटलीस्ट इतनी हो, या दुपट्टे या चादर जो भी आप उसको बोल रहे हैं लफ्ज, कि वो इस एरिए को, अच्छा जब खिमार ऊपर से आएगा तो गर्दन बीच में आ जाएगी। अच्छा, अब भी मैंने देखा कई लोग कैप्स पहन लेते हैं, यानी कई कल्चर्स में क्या करते हैं वो।

बाहर से कोई अंदर, बाहर बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर

0: ये आगे देखा है, वैसे ही आगे खुद ही, कहीं दो तो नहीं खुले हुए थे। और ये आवाज कहाँ जा रही है? इसका कहना है फुट बाहर है ना,
1: मगर ये पे ये तदीर नहीं कर सकते।
0: साउंड ब्लास्टर।

0: चेंज होता है,
1: क्या करें इसको, ठहर।
0: ये चेंज होता है,
1: ये क्या है,
0: ये जो प्राइमरी साउंड जो गलत हुआ
1: है, यहाँ से चेंज नहीं करेंगे, यहाँ से छोटा कर देना, छोटा कर दो यार, इतना बड़ा तो नहीं रखते होते ना प्राइमरी, अब बंद हो गया, अब चल बोल नहीं, खराब है नहीं करता ना बेटे, कहीं और से सेट करना पड़ता ही रहा है, यहाँ से होते हैं ना जो उसके साउंड्स वगैरह ना, वहाँ से करने पड़ते हैं, यहाँ से करने पड़ते हैं राजा।

0: टाइम फिर साउंड ड्राइवर ढूंढो बेटे,
1: ये गलत हुआ।
0: साउंड ड्राइवर ढूंढे कहाँ से ढूंढे, इधर से जाते ना,
1: इधर से ही होता ना, यहाँ से हमने गलत दबाया
0: यार। उसने इधर से ठीक किया था, बीच में से सही किया था,
1: यहाँ पर
0: किधर दे दे,
1: यहाँ पर उसने सारा दे दिया।
0: नहीं यार, हमने ठीक किया था, जो प्ले करते थे हमने खुद भी ठीक किया था। इधर गए थे ना, यहाँ पे कहाँ पे गए थे, प्राइमरी साउंड ड्राइवर इधर आए थे, ये ना। ठीक हाल तो हुआ हुआ ना, प्राइमरी साउंड ड्राइवर जहाँ से ढूंढते, कहाँ से हमने आवाज़ें ढूंढी थी एक बार यार, राजा और नीचे मार के ये नहीं था, हमने कुछ किया था हमने, ये राजा कहाँ से ढूंढा था हमने एक बार, कुछ हमने ढूंढा नहीं था,
1: वो इधर था,
0: इधर जाने क्या किया था, इधर से नहीं ढूंढा था। प्राइमरी साउंड ड्राइवर जो है ना, ये हो जाता है बेटे।

0: प्राइमरी साउंड ड्राइवर ढूंढो बेटे, यहाँ से हमने साउंड ढूंढा नहीं था एक बार, इधर गए थे यार आगे आगे।
1: साउंड
0: ये क्या है?
1: ये तो ये मोटिफिकेशन इसके साथ तो नहीं, इधर साउंड
0: नहीं था बेटे, ये नहीं था, ये लगी हुई है अभी। साउंड ड्राइवर ढूंढा था हमने यार, नहीं ना होता, हमने ढूंढा था जो है ना कहीं से ढूंढा था हमने साउंड ड्राइवर, याद नहीं एक बार गए थे अंदर इधर। यहाँ ये था, ये चीज चलता, यहाँ से ढूंढा था इधर। यहाँ यहाँ पड़े होंगे,

0: ये क्या राजा, इधर आओ। फिक्स प्रॉब्लम्स,
1: रीइंस्टॉल तो नहीं कर
0: नहीं कर रहा ना,
1: फिर वो वापस ले जाएगी,
0: वापस ले जाएगी शायद है।
1: अपडेट वापस करेगी।
0: हाँ वापस कर देना।
1: रीइंस्टॉल द करंट वर्जन फॉर विंडोज प्रीसेट में, हमें पहले वाले हो जाएगा।
0: पहले वाले हो जाएगा, रीस्टेंस कर दूँ।

0: ఇది నాకు ఇప్పుడు రాజా. ओके कर दूं
1: कि सारा उड़ी ना जाए ना.
0: मैं
1: सारा उड़ी ना जाए.
0: कंपोनेंट्स एंड सिस्टम फाइल्स. ये फिक्स विदाउट सेटिंग है ना.

0: प्राइमरी साउंड ड्राइवर ढूंढना है राजा मार के।
1: अच्छा ये हाँ। फाइल पे क्लिक करें।
0: किधर?
1: ये जो फाइल है
0: कौन सी?
1: ये ऐप नहीं, इस ऐप
0: इसने मेरे ख्याल रखे हुए थे, इसने यहाँ रखे हुए थे। कहाँ कहाँ था आपने ऑप्शंस?

0: ये क्या करूं, डू यू वॉन्ट टू ओपन एंड रीड ओनली कॉपी, ओपन एंड रीड ओनली कॉपी, क्रिएट ए कॉपी एंड ये भी है रामी, इस काम की था भैन चौदह खराब है।
1: मुझे पता था कि
0: हैं
1: वो जो चांद दिखा हुआ था, ड्राइवर दिखा हुआ था ना वो,
0: हाँ इसको डिलीट करता हूँ जरा, फिर
1: अपडेट। नहीं जो प्राइमरी ड्राइवर चांद दिखा हुआ था ना,
0: हाँ
1: उधर मुझे फिलहाल पता था कि चेंज कैसे करते हैं।
0: अच्छा ये था ना, किधर था
1: ये, अच्छा इधर फाइल पे क्लिक करें, फिर इधर क्लिक करें,
0: शेड्यूल
1: प्ले बैक
0: है, है प्ले बैक है ना,
1: एक सेकंड,
0: शेड्यूल पे करूं, परफॉर्मेंस यहां से खराब हुआ था बेटे, यहां से सेट करना है। आप शो ओपन करूं,
1: नहीं ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करना, ये
0: यही उसने किया होता, पिया ने यहीं से ढूंढा था,
1: इसको शायद किसी को फोटो भेजे इसका, फिर
0: क्या
1: इसे मस्ता समझाते हैं, इसको फोटो ये ऐसे करके भेजे।
0: ये कॉपी नहीं जाता, ये हाल नहीं होता है।

0: Are you starting up? यहाँ से नहीं रिस्टार्ट कर सकता। फिर आपको फिर फोन करेंगे
1: क्या
0: फिर
1: करो।